वैसाख मालसुअन फिरुनु पुण्य में मोहतक बुध प्यान वांसे गे आलोके अपे हदवदत मुर्दुले से वैटने अपूर्व भक्ति गीत तंग ओबवित गिने अपे सुधारण करा एडवर्ड जैकोट गे पिरुसु दुहांड वैसाख उत्सव सत्य अरुत संगीत बेंदला अपे सितट पिरुसुदु सेत्सुवक गिने अतिशय आदरणीय गीत वैसाख आलोके पुण्यत बुधु गुणे सुवंदत ඔබ හදවතට පිරෙන්න දැන් ඇසෙන්නේ වෙසක් ලැබෙනවා එඩ්වඩ් ජයකොඩි.